0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: दुई ग्याङसुका ठोकर दोलखा। अन्य जानकारी को लागि सम्पर्क नम्बर 9851066165 9851066165।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

कपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर द नारी ले प्रगति पथ को।

केशर कागेश्वर बागेश्वर फनल मणेश्वर पाटन कुम्भेश्वर सुनकोटी शर्मा रहे किभ्रिंगेश्वर लेले मतिलेश्वर जय गाय दर्शन प्रभु करुण छलीला उन्हीं को चल चोर प्रभु विषय अरुका कुन को राम।

दुनिले रसंखा दुनिले चार को सदा गुरुदानी गुरु वही दानी हूँ ना जान सब जस बखता माँ पापी ते सही आती ने ना ना

かりかな。いへらまへらまへらまい。पांचवा पांडव भाई और के भाई भाने देखी उतापकी परमात्मा 36 वर्ष पछाड़ी राज्य उन्हीं